0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 25वीं तिथि तदनुसार 15 मई सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है और आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ना सके कोई मुझे छू ना सके कोई मुझे

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई को। फिल्म का नाम था अशोका। अगला गीत आइए सुनते हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दीवानगी।

फना फिल्म में आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान को। अगला गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। फिल्म का नाम है हीरो नंबर 1।

इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पढ़े तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
1: और मैं अजीत। नमस्कार। राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पीकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
3: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
3: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
3: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
3: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
3: जी जी जी, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियां जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
3: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
3: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
3: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
3: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
1: जैसे
3: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।

0: विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
1: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
1: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी

0: वे कहती हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 1 सिख रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से

0: वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार,
5: सवेर होगी।
2: साहब, और

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल, सत्र का।

0: कोलकाता तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
1: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
2: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
4: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong, and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
5: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
4: On that day, the sun shone bright, and all the children were wild with excitement.

0: I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick heavy.
1: तो श्रोताओं, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले साल से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि CBI नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी।
1: CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है, CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से हो। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया, इसको सुधार किया ही जाएगा।
0: गौरतलब है कि नीट परीक्षा 2026 3 मई को हुई थी, किंतु पेपर लीक होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। ईंधन बचत अभियान के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से श्री शर्मा EV वाहन में कार्यक्रम में पहुंचे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।
2: राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफ टॉप प्लग लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की

0: को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
1: खैरथल तिजारा जिले को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए हो रहे कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वीसी के जरिए जुड़े हैं। ईंधन बचत अभियान को लेकर जागरूकता संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम में ये लोग वर्चुअल भागीदारी कर रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की आज 16वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि श्री शेखावत ने भारतीय राजनीति में सुशासन, संवेदनशीलता और जनसेवा की अमिट छाप छोड़ी। गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए उनका जीवन प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर श्री शेखावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा जिले के मांडल चौराहे पर आज एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथ ले जाए जा रहे चोरी के आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ देर यातायात बाधित रहा। हादसे के शिकार पुलिसकर्मी चित्तौड़गढ़ GRP थाने में पदस्थापित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मूमल।

नमस्कार सखियों, मैं हूँ सोनल और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मूमल। मैनो, अगर हम बात करें हमारी फैमिली को लेके, तो हम अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा पजेसिव होते हैं, क्योंकि उनके आसपास ही हमारी सारी दुनिया होती है। और ये बिल्कुल एक बड़ा सच है कि परिवार ही जो है वो हमारे सुख दुख का साथी होता है। परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें भावात्मक सहारा देता है, प्रेम देता है। और अगर एक सुरक्षा की बात करें, जहाँ पे हम सुरक्षित फील करते हैं, बहुत ही सहज फील करते हैं, तो उसमें बात आती है सबसे पहले परिवार की। क्योंकि परिवार सुख दुख में हर सदस्य जो होता है उसका एक अपना रोल होता है, क्योंकि ये अपना आपको भावनात्मक सपोर्ट देता है, भावनात्मक संबल देता है। दुखों का समय हो, कठिन समय हो, या बहुत अच्छा समय हो आपके लिए, परिवार ही जो है जो स्तंभ बनकर हमेशा हमारे साथ में रहता है। चाहे कितनी बड़ी चुनौतियां हो जीवन में, कितनी परेशानियां आए, कितनी प्रॉब्लम्स को हम फेस करें, ऐसे में मेंटली रूप से जो लोग सशक्त रहते हैं उनके पीछे परिवार का एक सबसे अहम रोल होता है। खुशियों को दुगना अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमारी जो खुशियां हैं वो दुगनी हो सकती हैं, तो उसमें आता है कि सुख के समय में परिवार के जो सदस्य हैं वो मिलकर खुशियां बांटते हैं, जिससे जो हमारा आनंद है, हमारी खुशियां हैं, वो हमें दुगनी फील होती हैं। खुशियों में तो हमारा जो परिवार है वो हमारे साथ में रहता ही है, लेकिन जब बात आती है हमारे दुखों की या हमारे कठिन समय की, क्योंकि हम एक संसार में रहते हैं जहाँ पे हमें रोज बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, लेकिन ऐसे कठिन समय में, ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसी चुनौतियों में जरूरी है कि आपको भावनात्मक तरीके से सपोर्ट मिले, क्योंकि एक भावनात्मक सपोर्ट ही ऐसा होता है जिससे आप अच्छा फील कर पाते हैं। चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे भावनात्मक हो, सपोर्ट बहुत जरूरी है इंसान को, और वो ही हमें परिवार से ही सबसे ज़्यादा मिलता है। जब परिवार के सदस्य जो होते हैं सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इसमें आपसी प्रेम, समझदारी और एकता जो है हमारी वो बढ़ती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आज का जो समय है, हर कोई वर्किंग होता है ऐसे समय में, और ख़ास करके महिलाओं की बात करें तो हम महिलाएँ भी आजकल वर्किंग हैं, कुछ ना कुछ काम करती ही हैं। और चाहे वो कोई भी आपका कोई भी वर्क प्लेस हो, आप कोई जॉब करती हैं या आप कोई बिजनेस कर रही हैं, साथ ही साथ आपको घर तो संभालना ही होता है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे में, ऐसे समय में जो डिप्रेशन है वो होना कई बार आम बात हो जाती है। कई बार आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिप्रेस रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, सोचते रहते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, कठिन समय में किस तरीके से उन चुनौतियों को हमें फेस करना चाहिए। तो ऐसे में जब बात आती है डिप्रेशन की, तो आपका परिवार ही एक वो चीज़ होती है जो हमेशा आपके साथ में खड़ा होता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी समय निकालें, अपने परिवार के लिए समय निकालें, और जो कुछ बातें आपके मन में चलती रहती हैं हमेशा, कुछ बातों को आप किसी के साथ शायद कभी शेयर नहीं करना चाहते, अपने मन में ही रखना चाहते हैं, और वो जो बातें होती है वो आगे जाके एक डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। तो ज़रूरी है आप अपने परिवार वालों को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, साथ ही साथ और भी जितने परिवार के सदस्य हैं उनको आप समय दें, और उनसे बैठ के बातें करें, कुछ अपनी सुनाएं आप, कुछ उनको सुनिए, तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही हल हो जाती है। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो आप बहुत ही हल्का फील करते हैं, बहुत ही लाइट फील करते हैं। और हो सकता है कि कुछ बातों के जो निर्णय हैं आप नहीं ले पा रहे हैं खुद से, तो ऐसे में उन निर्णय कि जो लेने की शक्ति है वो आपको अपने परिवार से शायद मिले। कुछ बातों के जो जवाब हैं हमेशा हमारे पास नहीं होते हैं, और उन जवाबों को हम अपने ही अंदर कहीं ना कहीं खोजते रहते हैं, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कुछ सुने, तो ऐसे में हम तकलीफ में आते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं और ख़ुद को अकेला फील करते हैं। तो खुद को अकेला फील होने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपसी समझदारी और आपसी जो कनेक्शन है आपका आपके परिवार वालों के साथ में, वो बहुत ही एक जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमेशा आप बैठ के आपस में बातें करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम है वो आपकी यूं ही हल हो जाएंगी। तो
तो सखियों, बातें तो हम आपसे यूं ही करते रहेंगे, चलिए ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में, सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो सखियों, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में कभी कभी फिल्म से ये प्यारा सा गीत। सखियों, अगर हम बात करें हम महिलाओं की, तो हम महिलाएं किसी भी रूप में, किसी भी दिशा में, किसी भी फील्ड में पुरुषों से पीछे बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आजकल की जो महिला की बात करें, तो आजकल की जो महिलाएं हैं घर के साथ में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो संभाल रही हैं। आजकल की जो महिलाएं न केवल पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में तो आगे बढ़कर नेतृत्व भी कर रही हैं और अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से रूढ़ियों को तोड़कर हर मुकाम को हासिल कर रही हैं। चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो, राजनीति की बात हो, या कोई भी वर्क प्लेस जैसे आपका कोई बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं आगे बिल्कुल भी पीछे तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चार कदम अगर पुरुषों की बात करें तो उनसे वो आगे ही हैं। भारत में महिलाएं जो हैं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पंचायत से लेके देश की संसद तक हर एक जो महिला है वो बहुत ही अहम फैसले ले रही है, जिससे वो और भी ज्यादा सशक्त हो रही है। अगर हम बात करें महिला पुरानी स्थिति की, तो पहले समय में जो महिलाएं हैं वो एक उनके सीमित एक दायरा था, वो परिवार तक ही सीमित थी, परिवार के बारे में ही सोचती थी, उनको और कुछ सोचना उनको ऐसा लगता था कि अलाव ही नहीं है, बस हमें अपने परिवार के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में सोचना है, उससे बढ़कर हमारी और कोई

दुनिया ही नहीं है। लेकिन जब से धीरे धीरे शिक्षा का विस्तार हुआ है, महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया है, तो उस हर महिला ने अपने अधिकारों को पहचाना है कि हम महिलाएं भी घर से निकलकर, परिवार से निकलकर कुछ ना कुछ और कर सकती हैं। और ऐसा सखियों बिल्कुल भी नहीं है कि अगर महिलाएं किसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं तो वो परिवार नहीं संभाल रही हैं। वो बखूबी अपना परिवार भी संभालती हैं और साथ ही साथ दूसरी अगर जिम्मेदारियों की बात करें तो और भी जिम्मेदारियां जो है उनकी, उसको भी बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं, उनको और संभालती हैं। आजकल तो गांव की जो सखियां हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं, बहुत सारे फील्ड में आगे हैं। अगर हम छोटे छोटे उद्योगों की बात करें तो छोटे छोटे जो उद्योग हैं जिन्हें हम लघु उद्योग बोलते हैं, जो घर से ही शुरू किए जा सकते हैं, ऐसे कई तरह के जो व्यवसाय हैं महिलाएं खुद घर से भी वो चला रही हैं, चाहे गांव की ही बात हम क्यों ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने घर से ही कर सकती हैं। तो ऐसे में खुद को पिछड़ा हुआ मानना या पीछे मानना, ये बहनों बहुत ही गलत है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो ही आपकी आगे की दिशा को निर्धारित करती है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो आप अपने घर से ही कुछ भी छोटे छोटे व्यवसाय चालू कर सकती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे उद्योग जो हैं वो भी आप अपने घर से चालू कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें तो और भी जो फील्ड हैं, पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई की दिशा में और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आजकल की जो महिलाएँ हैं वो शिक्षक, महिला शिक्षक भी बहुत सारी हैं। हमें हर उस महिला को फॉलो करना चाहिए जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ उसने अचीव किया है या कुछ ना कुछ कर रही है, तो हमें उनको देख के उनसे कुछ सीखना चाहिए और ऐसी जागरूकता हमारे अंदर आनी चाहिए कि हमें भी अपने घर से, अपने परिवार का तो करना ही है, बट उससे आगे कुछ निकल के अपने बारे में भी हमें कुछ सोचना है। आज के समय में जो महिलाएँ हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, नए जो स्किल्स हैं वो भी सीख रही हैं और काम की जगह पे अपनी जो जगह है वो मजबूत कर रही हैं। बहुत सारी योजनाएं जो ऐसी होती हैं जो हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए चलाती है, तो इन योजनाओं का भी ज्ञान सखियों आपको होना चाहिए, उसके बारे में भी जागरूक होना आपको बहुत ज़रूरी है कि क्या योजनाएं ऐसी हैं जो हम महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं और हम उसका जो बेनिफिट है, उसके जो फ़ायदे हैं, हम किस तरीके से ले सकते हैं। आजकल महिलाओं के स्किल्स को निकालने की बात करें अगर हम, तो उसके लिए भी बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत सारी योजनाएं हैं उसमें, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस है, हेल्थ केयर है, तो ये जो फील्ड है ये भी आप अपना सकती हैं और एज ए आप उसको व्यवसाय के रूप में चुन सकती हैं। तो सखियों, जरूरत है तो अपने पंख फैलाने की, अपने आप को बिल्कुल भी एक सीमित दायरे में मत बांधिए और कोशिश करिए कि आप अपने घर से निकल के भी अपने लिए कुछ कर पाए, सेल्फ डिपेंड हो पाए। इससे आपके अंदर एक जो आत्मविश्वास है वो बनेगा कि हाँ, आप भी कुछ कर पा रहे हैं और अब आपके जो आने वाली पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं, उनको भी आप शायद कुछ ऐसे संस्कार दे पाएंगी, कुछ उनको समझ पाएंगी और उनकी भी उनको जो फील्ड चुनना है उसमें आप मदद कर पाएंगी। तो सखियों, बातें आपसे हम यूं ही जारी रखेंगे। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा संगीत।

अब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है कुल किले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले

0: तो सखियों, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में सिलसिला फिल्म से ये प्यारा सा गीत। तो सखियों, हम अभी आपसे बातें और भी यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?
2: So easy!
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो सखियों, अभी हम बात कर रहे थे कि हम महिलाएं हर दिशा में, हर फील्ड में, हर कोई, चाहे कोई व्यवसाय हो या कोई आपका जॉब हो, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, बल्कि वो हर दिशा में अपना परचम लहरा रही है और हर दिशा में अपने दो

और ऐसे में उबर पाना उन चीज़ों से और अपने आप को डिप्रेशन से बचाना, तनाव को कम करना कई बार एक चुनौती बन जाती है। और आजकल की लाइफ की अगर हम बात करें तो सखियों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम तनाव या तो यूं ही लेते हैं कुछ बातों का, और या फिर ज़्यादा भागदौड़ भरी लाइफ होने की वजह से तनाव खुद ब खुद भी हमें घेर लेता है। तो ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपने लिए समय निकाल के मानसिक तौर पे फिट रह सकते हैं और साथ ही साथ फिजिकली भी अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि आप किस तरीके से मेंटली खुद को आप फिट रख सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको इग्नोर करना होगा। सबसे पहले तो जब हम एक परिवार में रहते हैं या फिर हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और सबके विचार जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, सबकी थिंकिंग ऑफ वे जो है वो अलग होता है। तो ऐसे में उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोड लेना और ऐसे में तनाव को अनावश्यक रूप से लेना सखियों बहुत ही गलत है। तो मेंटली अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखने की कोशिश करें, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में इग्नोर करना सीखें। सखियों इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बहुत सारी चीज़ों का जो तनाव है अपने ऊपर हम लेते जाएंगे तो उससे जो आप अनावश्यक रूप से जो तनाव है वो आपको घेर लेगा और फिर वो डिप्रेशन में बदलता जाएगा। और ये जो डिप्रेशन है वो कई बार बहुत ही गलत रूप ले लेता है, बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। और ऐसे में आप अकेलापन खुद को फील करने लगते हैं, अकेले अकेले हो जाते हैं और लोगों से कटे कटे से रहने लगते हैं। तो ज़रूरी है कि कुछ लोगों को आप इग्नोर करें, उनकी बातों को, अगर आपको उनकी बातें नहीं समझ में आती हैं तो उनको इग्नोर करना सीखिए। और सबसे बड़ी बात एक जो आज के समय में है सखियों, वो है कि कभी कभी ना कहना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी क्षमता जितनी आपकी है उससे अधिक काम बिल्कुल भी ना लें, इससे बेवजह का डिप्रेशन होता है, बेवजह का तनाव होता है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, सारी चीज़ें हम खुद ब खुद हैंडल हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और कई बार शायद हमारा हम महिलाएं हैं तो हमारा नेचर ही ऐसा होता है कि हम कई सारी चीज़ों को ना कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि जब आप एक फैमिली में होते हैं तो वहाँ पर भी ना कह पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन यही चीज़ें ही आपको अपने अंदर सुधारनी है कि कभी कभी ना कहना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है आपको, कि जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये चीज़ों को, तो आप उन चीज़ों के लिए सिंपल सा एक ना कह दें। उसके अलावा अगर समय निकालने की बात करें तो सखियों समय बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अपने आप को कितना समय दे रहे हैं, अपने परिवार को कितना समय दे रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए खुद को समय दें। अगर आप कोई जॉब में हैं तो वहाँ से भी एक ब्रेक लेना सखियों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपकी मेंटल कंडीशन को सुधारता है। जब आप कंटिन्यू काम करते जाते हैं तो ऐसे में बहुत सारा जो बोझ है अपने सर पर ले लेते हैं और वो ही तनाव का कारण होता है। तो बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, और उस ब्रेक में आप कहीं भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में घूमने जा सकते हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं, कुछ अपनी बातें सुना सकते हैं, तो इससे जो तनाव का लेवल है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। बात करें बहनों हंसने की और खुश रहने की, तो सबसे जीवन में ज़रूरी है हंसना और खुश रहना। दोस्तों के साथ अपना समय बिताएं, क्योंकि हर बार परिवार के साथ ही आप समय बिता रहे हैं तो उसके अलावा आप अगर सोचते हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल के बारे में तो वो चीज़ें भी सखियों बहुत ज़रूरी होती हैं। थोड़ा परिवार से हट के अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताएं, क्योंकि कुछ बातें शायद ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने परिवार वालों के साथ शेयर नहीं कर पाएं, लेकिन अपने फ्रेंड्स को वो बातें हम ज़रूर बता सकते हैं। तो कई बार अगर आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपको कोई बातें परेशान कर रही हैं, तो उन बातों के लिए आप अपने फ्रेंड से भी राय ले सकते हैं। हो सकता है कि कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिविटी जो है वो आपको उनसे सीखने को मिले, तो उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए सखियों कि हमारे जो आसपास लोग हैं वो कैसे लोग हैं, वो हमें हमेशा पॉजिटिविटी दे रहे हैं या उनसे हमें नेगेटिविटी मिल रही है।

ये चीजों को जानना भी बहुत जरूरी है। अपने आसपास हमेशा एक ऐसा सर्कल रखिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देता हो, क्योंकि जब हम अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं, तो वो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी आपको देते हैं और अनावश्यक रूप से ही आप परेशान होने लगते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में खुद पहले से भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसे में नेगेटिव लोगों का साथ होना आपको सखियों और भी ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो पॉजिटिव हों, और जो आपका आसपास का माहौल हो वो भी पॉजिटिव हो, जिससे आपका जो तनाव है वो कम हो। ऐसे में खुश रहना, और अगर आप कुछ ऐसा कुछ देखते हैं, कुछ टीवी पे देखते हैं, तो ऐसे ही आपको चीज़ें चुननी चाहिए जो आपके लिए आपको खुशी दे, आपके जीवन में हंसी खुशी लेकर आए। उसके अलावा अगर हम बात करें तनाव को कम करने के लिए, एक सबसे अच्छा तरीका सखियो ये भी है कि आप किताबों को पढ़िए, क्योंकि आजकल लोग पढ़ते बहुत कम हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और भी चीज़ें जिन्हें हम नहीं जानते हैं वो जान पाते हैं, और हमारा जो पेशेंस लेवल है वो भी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि जब आप किताबों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका जो पेशेंस का दायरा है कई बार वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अच्छी अच्छी आप बुक्स पढ़िए, उनसे बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी, आपका नॉलेज भी उससे गेन होगा, और साथ ही साथ जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, वो भी कम होगा। ये तो थी सखियों मेंटली चीज़ें कि आप क्या कर सकते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। साथ ही साथ अगर इसमें थोड़ा बहुत ऐड करना चाहें तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत इजी हो जाती हैं। तो ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, योगा का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें सखियों फिजिकली फिट रहने की, क्योंकि तनाव का सीधे से एक जो कनेक्शन होता है वो फिजिकली भी कहीं ना कहीं आता है। जब आप तनाव में होते हैं, जब आप डिप्रेशन में आते हैं, तो आपके शरीर पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि फिजिकली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले बात तो आप नींद पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर नींद पे पड़ता है। तो भरपूर 6 से 8 घंटे की नींद लेना सखियों बहुत ज़रूरी है। नींद लें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, आप क्या खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी सखियों बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना 30 मिनट अपने लिए निकालें, उसमें या तो आप दौड़ें, योगा करें, कुछ और भी आप जो करना चाहें वो आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए खुद के लिए समय निकाल के आप कर सकते हैं। गहरी सांस लें और ध्यान करें। जब आप तनाव जब भी आपको फील होता हो, जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही एंजाइटी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तनाव हो रहा है और अभी आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो 5 मिनट के लिए शांत बैठकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप फील करेंगे कि आप बहुत ही लाइट फील कर रहे हैं, बहुत ही आपका जो दिमाग है वो शांत फील हो रहा है उसको, और आप बहुत ही शांत हो गए हैं। तो गहरी सांस लेना और ध्यान लगाना ये भी एक बहुत ज़रूरी है। हेल्दी आप डाइट लें, जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, साबुत अनाज है, ये चीज़ें अपने डाइट में शामिल करें। और कैफीन और जो चीनी है इसका जो अपनी डाइट से जो मात्रा है वो बिल्कुल ही कम कर दीजिए, क्योंकि कैफीन का ज़्यादा जो प्रयोग है, जैसे हम चाय कॉफ़ी रोज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसका भी असर आपके सीधे सीधे डिप्रेशन या तनाव से पड़ता है। क्योंकि ऐसे में आपको नींद कम आती है, आप रिलैक्स कम कर पाते हैं, तो आपका जो डिप्रेशन लेवल है वो कई बार बहुत बढ़ जाता है। तो अपनी डाइट से कैफीन वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको कम करिए और हेल्दी चीज़ों को आप शामिल करिए। तो ऐसा करके भी आप बहुत ज़्यादा तनाव से बच सकते हैं। तो सखियों, बातें आपसे और भी यूं ही जारी रहेंगी। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो सखियों, अभी हम बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से खुद पे कंट्रोल करके तनाव को, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, लेकिन संयम जो एक चीज है वो भी बहुत जरूरी चीज है कि किस तरीके से हम अपने आप पे संयम बना के रखते हैं। सेल्फ कंट्रोल जो है वो सभी को आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीवन में संयम बनाए रखना एक निरंतर अभ्यास है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। क्योंकि संयम का सखियों अर्थ ही यही है, मन, वाणी और कर्म पर नियंत्रण। तो किस तरीके से आप अपने आप पे संयम बना के रखते हैं, क्योंकि आजकल के समय में जहां हम जो महिलाएं हैं वो खुद भी वर्किंग होती हैं और साथ ही साथ घर की, परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो ऐसे में सेल्फ कंट्रोल का होना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है और हम कुछ चीज़ों का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रख पाते हैं और चीज़ें अनावश्यक रूप से ही बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जाती हैं, खराब होती जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी बात आपको परेशान करती है तो पहले कुछ मिनट रुक के, कुछ देर रुक के उन चीज़ों के बारे में सोचें। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें परेशान करी और हमने उसका तुरंत ही रिएक्शन दिया, तो जो तुरंत रिएक्शन होता है कई बार वो हमें गलत दिशा में ले जाता है और हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर देता है। इसीलिए ही सेल्फ कंट्रोल को बहुत ही मुश्किल माना गया है और ये हर किसी के बस में भी नहीं होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाए, अपने आप को नियंत्रित कर पाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो दिनचर्या है सखियों वो नियमित हो, आपका जो एक रूटीन है वो प्रॉपर होना चाहिए। जब आपका एक रूटीन होता है, आपको पता होता है कि आपको रोज कैसे करना है, क्या करना है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। समय पर सोना, समय पर जागना, जो संयम की एक जो नींव बोले हम उसे, इसे ही माना गया है। जब आप प्रॉपर सोते हैं, प्रॉपर तरीके से जगते हैं, तब आप सारी चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है, बोलने से पहले विचार करें। कुछ भी बोलने या प्रतिक्रिया देने से पहले कई बार सोचें, ये मन और जुबान पर संयम स्थापित करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और इसके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आप ध्यान और अभ्यास करिए। ध्यान करने से आपका मन शांत होता है जो मानसिक संयम को बढ़ाता है, और अभ्यास के द्वारा ही आप अपनी जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक आपके मन में जो भाव पैदा होते हैं, वो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार चीज़ें जीवन में हमारे ऐसे होती हैं कि जो नकारात्मक विचार हैं वो सबसे पहले आते हैं, इसीलिए नकारात्मकता को अपने आप से दूर करने की ज़रूरत है। जितना हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे वो चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी होने लगती हैं। तो अच्छा सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा जो मन है कई बार वो सबसे पहले गलत दिशा की तरफ ही बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें करने से पहले हम अच्छा कम सोचते हैं और उसके जो नेगेटिव पहलू हैं, नकारात्मक जो उसके पहलू हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। रिजल्ट को हमें कुछ हद तक सोचना चाहिए कि अगर हम चीज़ क्या कर रहे हैं तो उनके क्या रिजल्ट निकलेंगे, बट उसको पॉजिटिव तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। जब हम नेगेटिव तरीके से सोचेंगे तो उसका जो असर है सीधे सीधे आपके काम करने की क्षमता पे भी पड़ेगा। तो हमेशा नेगेटिविटी से बचें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, और सेल्फ कंट्रोल को पाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। स्वयं पर संघर्ष करना, यानी कि सेल्फ स्ट्रगल करना, ये भी सखियों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में संयम रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन ये जो संघर्ष है ये ही बाद में साधना बन जाता है। इसका सीधा सीधा आध्यात्मिक एक पहलू भी है, क्योंकि हमारा अगर हम बात करें, बहुत सारा जो रिश्ता है वो जो पुराना है वो साधना से तो रहा ही है। हम अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो ऐसे में जो साधना होती है वो बहुत ज़्यादा आपको अपने सेल्फ कंट्रोल की तरफ ले जाती है। इसीलिए ही तो मेडिटेशन को बहुत सखियों एक अहम स्थान दिया गया है, एक उसका एक आपके जीवन में अहम रोल है। क्योंकि जब आप अपने आप को मेडिटेट करते हैं, जब अपने जीवन में साधना को लेके आते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होते जाते हैं और बहुत सीखना, संयम रखना सीखते हैं, चीज़ों को सुनना आप स्टार्ट करते हैं।
तो इसका भी आपके जीवन में बहुत ही एक अहम रोल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप चीज़ों को सुनने की जो कला है वो अपने अंदर लेकर आएँ, अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि कई बार हम बोलते बहुत हैं बट सुनना नहीं चाहते हैं और सुनने की कोशिश ही नहीं करते, तो उससे जो हमारा दिमाग सोचता है वही चीज़ें हम सोच पाते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला भी गलत नहीं होता, बस उसके नज़रिए को भी जानने की बहुत ही आपको ज़रूरत है कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है, तो हम उसको प्रॉपर सुने, तो कई बार सुनने से भी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो ये जो सुनने की शक्ति जो है एक, वो भी अपने अंदर आप लेकर आए। और जो संतुलित जीवन है, बैलेंस जो जीवन है, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अधिक व्यस्त शेड्यूल ना बनाएं। जब हमारे शेड्यूल बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, हम सोचते हैं हम ये भी कर लें, हम वो भी मैनेज कर लें, बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमारा जब मन दौड़ता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं और जो हमारा कंट्रोल है खुद पे से वो घटने लगता है और एंड में उसका जो एंड होता है, जो ख़त्म होता है, वो होता है तनाव से, डिप्रेशन से। इसीलिए ज़रूरी है कि लाइट रहें, बहुत सारी चीज़ों को साथ में एक साथ नहीं लेकर चलिए जीवन में। जितनी चीज़ें आपसे हो पा रही हैं, मैनेज इजीली हो पा रही हैं, उतनी ही चीज़ों को आप करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब हाथ पैर अपने चलाएंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए तो वो आपके लिए ही घातक होगा। तो सखियों, ये था कि आप कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें करके अपने जीवन को बहुत ही संतुलित बना सकते हैं, अपने अंदर संयम ला सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कैसे डेवलप कर सकते हैं। और ये जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत सारी जगह पे आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कई बार आप जहाँ पे आपका जो वर्क प्लेस है उस पे भी कई बार चीज़ें इसीलिए ख़राब हो जाती हैं क्योंकि हम संयम नहीं रख पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं चीज़ों को और वहाँ ही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और यही चीज़ें आपके पारिवारिक रिश्तों में, आपके जो घर के घरेलू जो रिश्ते हैं उन पे भी लागू होती है, क्योंकि जब हम सामने वाले की सुनते ही नहीं हैं तो ऐसे में हम रिश्तों को बिगाड़ देते हैं और आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए से फील होते हैं आपके लाइफ में। और रिश्तों की जो डोर होती है वो तो बहुत ही मुश्किल होती है, इसीलिए उन डोर को संभाल के रखना और अपने आप को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, अपने वर्क प्लेस के साथ में अपने परिवार को भी साथ में लेके चल पाएंगे। तो सखियों, बातें यूं ही आपसे जारी रहेंगी, चलिए सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना मैंने नहीं।

सखियों, अभी तो थी इतनी सारी तनाव को लेके, डिप्रेशन को लेके, संयम को लेके बहुत सारी चीजें हमने सुनी, लेकिन एक महिला के रूप में अगर हम बात करें तो आप हमेशा ही सुंदर दिखना चाहते हैं, हमेशा ही ऐसा चाहते हैं कि आप दूसरे को आकर्षक लगें। और ये जो थिंकिंग होती है, ये मैं मानती हूँ कि हर महिला में होती है कि वो अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करती है, किस तरीके से हम सुंदर लग सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं। तो कुछ जो ब्यूटी टिप्स हैं, हो सकता है आपकी इस और मदद कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्किन की केयर की बात करें तो सखियों, अभी बहुत ही गर्मी है और ऐसी गर्मी में अपनी स्किन का विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आपकी जो स्किन है वो बुरी तरह से झुलस जाती है। तो ऐसे में सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप कभी भी बाहर जाते हैं धूप में तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी जो अनावश्यक रूप से जितने जो आपके एजिंग के साइन होते हैं उनको रोकता है बढ़ने से, और आपकी जो टैनिंग इश्यूज है वो भी कम करता है। और साथ ही साथ रूटीन की जो प्रक्रिया, अगर हम बात करें कि क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की प्रॉपर है स्किन केयर के लिए, वो जरूर गर्मी में आप फॉलो करें। स्किन केयर के साथ साथ में आप जो खाने वाली जितनी भी अच्छी डाइट की चीजें हैं उन चीजों को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, और साथ ही साथ तनाव को, डिप्रेशन को अपनी लाइफ से बिल्कुल ही मुक्त करें। तो ऐसा करके आप प्रॉपर अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो सखियों, अभी बातें आपसे बहुत सारी करनी थी, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कार्यक्रम समाप्ति की ओर। तो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में पॉजिटिव बने रहें, और अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव दिशा दें। अपनी रेडियो सखी सोनल को दीजिए आज्ञा।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम मोमल, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजे हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में समाचार।

0: Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekhana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosho elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों के नाम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और दुर्गम का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को

0: अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
1: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: इलेक्ट्रॉन

0: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार है। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विद्युत सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की अलीना स्वीटोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वीटोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा

0: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
2: देखो जी बहार आई, देखो जी बहार।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

है बना नहीं देना, जमाना खराब है बना नहीं देना, बना नहीं देना, भुला नहीं देना, दिखाना नहीं देना, जमाना खराब है बना नहीं देना।

0: जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। कुमार बाराबंकवी ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला की इस गीत में।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: अभी अभी यहीं था किधर गया जी,
1: किसी किया दाव पे मर गया जी, बड़े बड़े अखियों से डर गया जी,
0: अरे जाने कहां मैं।

मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया, कोने

0: नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे। तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे।
1: बातें हैं नजर की।

0: फिर बतलाऊंगी।
1: जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी।
0: किया दाऊ पे मर गया जी, बड़े बड़े अखियों से डर गया जी।
1: अरे जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी।
0: किया दाऊ पे मर गया जी, बड़े बड़े अखियों से डर गया जी।
2: मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, ओपी नैयर की तर्ज, आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं, तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनेगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।
3: आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का

0: अब से तुम्हारा हो गया।
1: आँखों से आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों से आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने

0: हो गया,
1: आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का

0: इशारा हो गया,
1: आंखों की आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों की आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का

0: बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया।
1: ओपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
2: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, बोलो ना। अरे जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते। मोहब्बत जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। अरे अरे डॉज गाड़ी की इंजन की कसम, हम तो जाने प्यार करेगा।
3: अरे अरे अरे अरे अरे दीवाने, अबे मरेगा
2: नहीं डरेगा, हम तो जाने प्यार करेगा।

0: प्यार नहीं तो दुनिया में फिर बोलो क्या है रखा।
1: अब तू है दवा दुनिया का कुछ नहीं, तू है बजा रखा।
0: प्यार नहीं तो दुनिया में फिर बोलो क्या है रखा।
2: रुक सब तो रुको हमको, रुक सब तो रुको हमको, हम तो नैना चार करेगा,
1: नहीं डरेगा,
2: नहीं डरेगा, हम तो जानी प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार करेगा, हम तो जानी, हम तो जानी प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार करेगा।

0: दिल से दिल का सौदा करने ये है आया बंदा, मान भी जाओ प्यार से अच्छा नहीं है कोई धंधा।
1: क्या है धंधा?
0: दिल से दिल का सौदा करने ये है आया बंदा, मान भी जाओ प्यार से अच्छा नहीं है कोई धंधा।
2: जान की तेरी खैर नहीं है,
1: अबे भाग जल्दी।
2: जान की तेरी खैर नहीं है अगर तू तकरार करेगा।
1: नहीं डरेगा, नहीं डरेगा हमको जानी, प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हमको जानी, हमको जानी प्यार करेगा।

0: कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा।
1: पहले तो दिल फेंक कभी ना दिखाएगा वैसा।
0: कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा। मानो या न मानो हमको, मानो या न मानो हमको, तुम्हें गले का हार करेगा
1: नहीं डरेगा,
0: नहीं डरेगा हमको जाने। प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार करेगा हमको जाने, हमको जाने। प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार करेगा हमको जाने। हाय हाय हाय हाय रे।
1: हेलो हेलो हेलो, अरे हेलो है चापाती, हम कुत्ता से हम लड़ा और बंदी हो गया शादी। हेलो हेलो हेलो, हेलो है चापाती, हम कुत्ता से हम लड़ा और बंदी हो गया शादी। हेलो हेलो।

0: बोलो जी हे दाती दी, ये किसने सिखा दी, कलकत्ता तुमसे आज लड़ा और बंबई होगा शादी। हेलो हेलो हेलो, अरे हेलो हैदराबादी, कलकत्ता तुमसे आज लड़ा और बंबई होगा शादी।
1: अरे हेलो।

होगा शादी। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हैदराबादी, कलकत्ता तुमसे आंकड़ा और बम्बई होगा शादी।

0: तुमसे आँख लड़ा और बंबई हो गया शादी।
1: हेलो हेलो हेलो अरे हेलो हैदराबादी, कलकत्ता तुमसे आँख लड़ा और बंबई हो गया शादी।
2: अरे हेलो हेलो हेलो।
3: राजा मेहंदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

इसके साथ ही आज का सदाबहार नकमे कार्यक्रम आप समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत। ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना। अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक भरा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपको कॉल लगा है?
1: जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा, बीस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3 अगस्त बच्चे हैं वो अपने चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के

0: ये बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे रिलेटिव हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं। और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और हमारे साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिलकर मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती है, जैसे आप कुछ काम कर रही है, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम तो निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो तभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की मूवी है यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया।
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली,
1: बताइए कौन सहेली बात कर रही है?
2: जी मेरा नाम वर्षा धगत है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
1: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
2: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
1: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में ना?
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अच्छा वर्षा जी बताइए, आपके बारे में बताइए।
2: सोनाली जी मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और उसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
2: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने, और परिवार की अहमियत मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
1: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
2: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है,
1: और
2: ये हर महिला मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
1: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई तो है ना?
2: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंचे, एम आई राइट?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
2: बिल्कुल, हर महिला को खास तौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
1: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं वो बहुत आगे बढ़ेगी।
2: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं
3: ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले
4: अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं।
5: ओ मजनू के नाना मेरे पीछे नहाना, जब प्यार करने वाले तेरी गैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी गैर नहीं।
4: ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं।

0: एक सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली।
1: ये बिजली गिरी तो तुम्हें पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे यो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं।
0: ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई बैर नहीं। अरे हम तुम

0: शुक्र करो के बड़े नहीं है मेरे माँ के धंधे, एक हाथ में हो जाते अरमान तुम्हारे धंधे।
1: माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले ने कोई वैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले ने कोई वैर नहीं।
2: कार्यक्रम हेलो सहेली में लेते हैं एक अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुळे।
0: प्रगति मुळे जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से
0: फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउसवाइफ हूँ। मैं हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप? कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

हाथों में मेहंदी लगा दो।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही है?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा आपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, नगर संभालती हूँ अच्छे से, और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी,
1: उनके आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी,
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी बहुत।
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाया बोलते कभी कम ज्यादा हो जाता है।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: खाने की तो अच्छी से आपने थकान जाती अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत पे फल मिलता ऐसा हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ।
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश,
1: गाने सुनते हो? तो रहता रेडियो दिन भर
0: रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती है?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का एक गीत सुनवाते हैं।
2: फूलों सा चेहरा तेरा, गलियों की मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, गलियों की मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों का चेहरा तेरा, गलियों की मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी है।

बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। हिरनी के जैसी आंखें है तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई, राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: हाँ, गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सच मुझे यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना।
1: अच्छा लगे, देवर है, देवरानी है, देवर की मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती है आपकी पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो बड़ी दुबारी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली
1: जी, नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हम तो सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी लीला भोले
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगा? खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम सिंपल।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती है। आपकी बदौलत जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती है आप? कभी खुद की खुशी का काम करती है आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती है अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, मैं तो टाइम नहीं मिलता, दिन में बच्चों का करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: हमारा खेत में जाना पड़ता
0: है। खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन गाना
0: है? हम आपके हैं कौन फिल्म का? माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें।
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद छाटी से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती है जिंदगी में।
1: हम हाउसवाइफ हैं और रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े जाते हैं।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर
1: हाँ
0: घर में भी रहती हैं, पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना।
1: हाँ हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं
0: क्या बात है, आप ऑलराउंडर
1: लेकिन
0: है ना।
1: हाँ, हम एक नहीं सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि
1: हाँ कोई
0: खुद के लिए आप जीते हैं क्या। ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये 1 घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप।
1: हाँ करते हैं, 1 घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं
0: और उसमें आपको खुशी
1: और जब
0: मिलती
1: खुशी
0: है,
1: मिलते हैं। हाँ अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है, पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और
1: हाँ,
0: आप
1: सुनते हैं जी।
0: जी।

0: आपने पसंद
1: महीना से छठ बताया रहे थे जी, कब 2 महीना पूरा होगा।
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: यशोमती मैया तेरे बोले नंद लाला।
0: सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
2: यशोमती मैया तेरे बोले नंद लाला।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, पास तालाब है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए, कभी शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ। मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी सर्विस सेंटर में हूँ। मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ। 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें।
1: जी,
0: और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती है, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी।
0: अच्छा
1: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
0: क्या बात,
1: साड़ी सेंटर में। सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल पे है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
0: जी।
1: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं।
1: हाँ,
0: प्यारे प्यारे गीत सुनते।
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकिया का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
0: क्या बात है,
1: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
1: जरूरी है, बराबर है
0: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
1: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूपों की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
1: धूप में निकल

रंग काला न पड़ जाए, मस्त मस्त आंख से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला।

गई हो तो बाहों में उठा ले, तुम तो थक गई हो तो बाहों में उठा ले, हुक्म तो हमें तो अभी पाल की ला ले, पंत है पथरीला पैदल न चलो तुम, पंत है पथरीला पैदल न चलो तुम, कहीं पाँव में छाला न पड़ जाए, धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न

0: तो ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह हैं 4002466 2, यानी 4002466 2. दूसरा नंबर है 2867 0288, 2867 0288। और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाई, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थी। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर था में अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गई, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है, सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात है। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका है। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती है, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही है, तो अभी भी कर सकती है। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत है तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज

ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई, ये हमेशा दबे पांव ही आती है, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम, बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे, जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ घर के काम निपटा कर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्या आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी, यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था, वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिटोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थी। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं ही सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी।
अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

0: जीवन से भरी तेरी आँखें।
1: ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना, खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर, उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूरी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

0: गया।
1: अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुह आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा। सरला, तुम चिंता मत करो, नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी है, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत तब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था, तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा, और मिली नीलकंठ का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहती? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, तो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। इस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और सहकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितनी

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए। छाया गी हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: विश्व से कह दो कि ले आए गरीब प्यास भड़की है सारे शाम चलता है बदन।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी सुनने वाली सभी युवा साथियों को आपकी दोस्त मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं हमारे सभी श्रोताओं को ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। जी हाँ, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली और हर साल जो है 15 मई को इसे मनाया जाता है। इस दिन को यूं कहें कि मनाने का मुख्य उद्देश्य परिवारों से जुड़े मुद्दों के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को हम कह सकते हैं कि पारिवारिक मूल्य जितने भी हैं उनके बारे में और आपसी संबंधों के महत्व के बारे में समझाना है। दोस्तों, इसकी शुरुआत तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 1993 में एक प्रस्ताव पारित करके की गई थी और पहला आयोजन जो है आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 1994 को जो है मनाया गया था। दोस्तों, परिवार समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होता है और ये दिन जो है समाज, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी से जुड़े उन बदलावों को समझने में मदद करता है जो परिवार के प्रति जीवन को प्रभावित करते हैं। और ये दिन दोस्तों हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने, परिवार की नींव को मजबूत करने और हमारे जीवन में परिवार की भूमिका, जैसे कि अगर हम कहें कि प्यार है, संस्कार है, सुरक्षा है, इन सब का जश्न मनाने का एक अवसर देता है। वैसे अगर देखा जाए तो हर दिन जो है एक दिवस ही है हमारे लिए, क्योंकि हम हमारे परिवार के साथ जब रहते हैं तो वो किसी त्योहार से कम नहीं होता है। और यूं कहें कि मानवीय संबंधों की आत्मा और सामाजिक एकता का आधार होता है ये परिवार हमारा। और हर वर्ष जो है इसमें एक थीम यानी कि एक विषय जो है वो रखा जाता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है परिवार दिवस के लिए जो है एक विषय चुना गया, वो है परिवार असमानताएं और बाल कल्याण। असमानताएं और बाल कल्याण इस बात पर जोर देता है कि बढ़ती असमानताएं पारिवारिक जीवन को कैसे आकार दे रही है और बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रही है। दोस्तों, जैसे कि हम आज जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो मना रहे हैं तो ये विषय जो है वो परिवारों पर बढ़ती असमानता के प्रभाव या फिर हम कहें कि बाल गरीबी को कम करने और स्वस्थ विकास के लिए नीतिगत निवेश पर केंद्रित भी है। असमानता और स्थिरता ये आय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर को कम करने पर जोर देता है और बाल कल्याण बच्चों को गरीबी से बचाना, स्वस्थ विकास सुनिश्चित करना और एकीकृत सहायता यानी कि परिवार केंद्रित नीतियों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी है। तो इसीलिए दोस्तों हर वर्ष जो है इसमें एक थीम रखी जाती है। और परिवार की जहां बात आती है, अगर हम परिवार की बात करते हैं तो कि कोई यूं कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के विकास का समूचा इतिहास यदि किसी एक केंद्रीय धुरी पर आधारित माना जाए तो वो दोस्तों निस्संदेह जो है परिवार ही है। परिवार केवल रक्त संबंधों का यांत्रिक संयोजन नहीं बल्कि भावनाओं की ऊष्मा, विश्वास और दृढ़ता, उत्तरदायित्व की गंभीरता, सहयोग की सहजता और सह अस्तित्व की सजीव अनुभूति से निर्मित एक संवेदनशील, जीवंत और सृजनात्मक संरचना है। और दोस्तों यही वो पावन आधार भूमि है जहां मनुष्य जीवन की प्रथम किरण के साथ संसार में प्रवेश करता है, अपने अस्तित्व का प्रारंभिक बोध प्राप्त करता है और जीवन के मूलभूत मूल्यों को आत्मसात करते हुए अपने व्यक्तित्व की नींव रखता है। जी हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से परिवार जो है वह पवित्र तीर्थ है जहां व्यक्ति का अहम क्रमशः वयम में विलीन होने लगता है। यह मैं से हम की सुंदर और सार्थक यात्रा का प्रारंभिक सोपान है जो मनुष्य को सामूहिकता, समर्पण और सहजीवन के उच्चतर आदर्शों से परिचित भी कराता है। और दोस्तों यही कारण है कि परिवार को समाज की प्रथम पाठशाला भी कहा गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ अर्जित संस्कार, प्रेम की कोमलता, त्याग की उदात्तता, अनुशासन की दृढ़ता, सहानुभूति की संवेदना और तौर उत्तरदायित्व की गरिमा न केवल जीवन पर्यंत साथ रहते हैं बल्कि व्यक्ति के यूं कह सकते हैं कि

व्यक्तित्व को जो है दिशा, गहराई और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। वर्तमान युग की अगर हम बात करें, जहाँ जीवन की गति अभूतपूर्व वेग से प्रभावित हो रही है, मनुष्य जो है प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़, तकनीकी निर्भरता की जकड़न और बढ़ते एकाकीपन के जाल में उलझता चला जा रहा है, और वहां परिवार की प्रासंगिकता और भी अधिक सशक्त, गहन और अनिवार्य हो उठती है। क्योंकि आज जो है परिवार केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भर नहीं रह गया है, बल्कि यूं कहें कि मानसिक संतुलन का आश्रय, भावनात्मक सुरक्षा का आधार और आत्मिक शांति का अमूल्य स्रोत बनकर उभरता है। और ऐसे संक्रमण काल में परिवार ही वो स्नेहमय आश्रय स्थल है जो व्यक्ति को स्थिरता, संतुलन और जीवन के वास्तविक अर्थ से पुनः जोड़ता है और उसे मानवीय संवेदनाओं की जड़ों से सशक्त बनाए रखता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में भी कहें दोस्तों, तो परिवार जो यूं कह सकते हैं हम कि ऐसी जगह होती है और ऐसे लोग होते हैं परिवार, जिसमें हम अपना हर सुख दुख निसंकोच जो है अपनों के साथ बांट सकते हैं। अपने दुख है तो अगर हम कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम किसी भी मुसीबत में भी आ जाते हैं तो पूरा परिवार जो है हमारे साथ खड़ा होता है, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। और हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में अगर हम फंस जाते हैं तो उससे निकालने के लिए भी हमारा परिवार ही हमारे साथ होता है। इसीलिए परिवार जो है एक कह सकते हैं कि व्यक्ति की मूल इकाई है और उसकी जड़ें हैं, क्योंकि परिवार के बिना जो है कुछ भी नहीं है। जिस तरह से एक पेड़ जो है बड़ी मजबूती से खड़ा रह सकता है, कितने भी आंधी तूफान जो अगर आ जाए तो उसे झेल सकता है, तो वो सिर्फ उसकी मजबूत जड़ों के कारण। तो वो जड़ें जो है वो परिवार है। अगर हमारे ऊपर कितनी ही कठिनाइयां, कितनी ही मुसीबतें, कितनी परेशानियां आ जाए, लेकिन अगर हमारा परिवार हमारे साथ रहता है तो हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को जो है हम मजबूत बना के रख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों परिवार हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। कई बार जो है लोगों को कमाने के लिए या अपने परिवार की जो है आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं होती है तो उसे बढ़ाने के लिए बाहर रहना पड़ता है, अकेले जीवन यापन करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उस समय जब वो अकेले रहते हैं तब जो है परिवार की कीमत जो है वो समझ आने लग जाती है कि अगर इस समय मेरा परिवार मेरे साथ हो। कई बार लोग जो है अगर अकेले रहते हैं तो बिना खाना खाए ही सो जाते हैं, कहीं भी कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन जब परिवार साथ होता है तो कोई भूखा नहीं रहता। परिवार एक साथ रहता है, मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे की परिस्थिति को समझता है। तो इसीलिए दोस्तों ये दिवस मनाने का यूं कहें कि मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर परिवार के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, जो कई व्यक्ति जो है ऐसे भी सोचते हैं कि हम अकेले रहकर जो है बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, तो उनकी जो ये सोच है उसे गलत साबित करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। कि क्योंकि उसे समझाया जाता है कि इसमें परिवार हमारी कितनी ज्यादा मदद कर सकता है। और दोस्तों यूं कहें कि परिवार जो है वो उसका हमारे जीवन में बहुआयामी महत्व है। परिवार व्यक्ति के जीवन में केवल यूं कहें कि एक आश्रय नहीं है, बल्कि एक समग्र विकास का केंद्र है। क्योंकि हमारी जितनी भी भावनात्मक या मानसिक सुरक्षा है वो परिवार से ही संभव है। परिवार वो स्थान है दोस्तों जहाँ व्यक्ति बिना किसी भी भय या संकोच के अपने विचार और भावनाएं व्यक्त कर सकता है। जीवन के संघर्षों से थका हुआ मन जब परिवार की स्नेह में प्रवेश करता है तो उसे एक प्रकार की मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। और जैसे कि हमने बताया कि व्यक्तित्व निर्माण अगर किसी का अच्छा हो तो व्यक्तित्व निर्माण की जो आधारशिला है वो परिवार द्वारा ही रखी जाती है। अगर आपका परिवार आपके साथ है, अगर यूं कहें कि बालक का व्यक्तित्व परिवार में ही आकार लेता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि माता पिता जितने भी हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए आदर्श होते हैं। उनके व्यवहार, जीवन शैली और उनके जो यूं कह सकते हैं कि उनकी जो मूल्य जो हैं उनके चरित्र को एक दिशा देते हैं। और दोस्तों सामाजिक मूल्यों का विकास जो है सहयोग, सहानुभूति, अनुशासन, सहिष्णुता और सम्मान जो है ऐसे गुण परिवार के द्वारा ही जो है एक

में प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई परिवारों में जो है बुजुर्ग होते हैं, तो परिवार बुजुर्गों के लिए केवल एक निवास नहीं है बल्कि सम्मान, सुरक्षा और अपनत्व का केंद्र होता है। उनके अनुभव और ज्ञान परिवार की एक अमूल्य धरोहर होती है, क्योंकि दोस्तों एक बुजुर्ग जो है एक वृक्ष की भांति है। हमारे परिवार में जो अगर बुजुर्ग देखते हैं तो उनकी छाया में पलने से जो हमें ठंडक महसूस होती है, हमें एक सुकून मिलता है, हमें एक सुरक्षा मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए एक संयुक्त परिवार जिसमें सभी रिश्तेदार रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मौसा, नाना नानी, एक परिवार को अगर जब बच्चा देखता है तो उसमें ये आदर्श जो है, संस्कार जो है, अपनी संस्कृति से वो जुड़ा रहता है। ये सब चीजें एक परिवार से ही प्राप्त हो सकती है। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो परिवार को अत्यंत ही पवित्र, सजीव, यूं कहें कि केंद्रीय संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। दोस्तों यहाँ परिवार केवल एक सामाजिक संरचना भर नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन का आधार भी है, जहाँ व्यक्ति न केवल जीवन जीना सीखता है बल्कि जीवन के उच्चतर मूल्यों को भी आत्मसात करता है। भारतीय परंपरा में परिवार व्यक्ति, समाज और संस्कृति के बीच एक सेतु का कार्य करता है। जी हाँ, भारत में परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली का व्यापक प्रचलन रहा है, जिसमें अनेक पीढ़ियां एक ही छत के नीचे साथ रहती है। और ये व्यवस्था केवल साथ रहने तक सीमित नहीं बल्कि सहयोग, सामूहिक उत्तरदायित्व, परस्पर सम्मान और त्याग की भावना को भी सुदृढ़ करती है। दोस्तों संयुक्त परिवार में जीवन के कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनमें एक मजबूत सहारा कोई अगर प्रदान करता है तो वो हमारा परिवार ही है। सामूहिकता की भावना जो है उसे जीवंत बनाए रखने के लिए भी परिवार बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की अगर बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो भारतीय दर्शन का ये जो है एक महान उद्गत विचार है। मानवता की सार्वभौमिक एकता और सह अस्तित्व की भावना को प्रकट करता है। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम मतलब संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। और ये सिद्धांत दोस्तों न केवल पारिवारिक संबंधों को गहराई प्रदान करता है बल्कि यूं कहें कि समूचे विश्व को एक सूत्र में बांधने का संदेश भी देता है, जिससे कि वैश्विक भाईचारे और शांति की स्थापना संभव होती है। और भारतीय परिवारों की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि यहाँ पे नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी सतत हस्तांतरण होता रहता है। यानी कि दादा दादी की जीवन उपयोगी कहानियां, धार्मिक ग्रंथों की शिक्षाएं, विविध पारंपरिक उत्सव और इस प्रक्रिया को जीवंत, प्रभावशाली बनाए रखते हैं। यही संस्कार व्यक्ति के चरित्र को परिष्कृत करते हैं और उसे समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। जी हाँ, परिवार के बारे में जितनी भी बातें की जाए वो कम ही लगती है, क्योंकि एक परिवार ही है जो हमारी आधारशिला है। तो आइए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, अपने तो अपने होते हैं। अगर परिवार साथ है तो सब चीज़ें मुमकिन हैं, और परिवार साथ नहीं तो कुछ भी चीज़ अगर मुमकिन हो भी रही है तो उसका कोई मज़ा नहीं, कोई खुशी नहीं। तो अभी आप सुन रहे थे अपने फिल्म का ये गीत सोनू निगम, जयेश गांधी और जसविंदर नरूला की आवाज़ों में। दोस्तों, अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करें और युवाओं की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है युवाओं के कदम जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, भारत सरकार, इसरो और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, स्पेस लैब्स और अंतरिक्ष संगवारी जैसे अभियानों के जरिए जो है स्कूली और कॉलेज छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जोड़ा भी जा रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण में युवाओं की जो यूं कहें कि भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी हाँ, इसरो द्वारा शुरू किए गए युवा विज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य जो है यही है कि स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके माध्यम से अब तक जो है यूं कहें कि हज़ारों छात्रों को प्रशिक्षित भी किया गया है, मतलब युवाओं को जो है अंतरिक्ष की शिक्षा दी जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरीके से जो है आप भी अंतरिक्ष में जुड़ सकते हैं और वैज्ञानिक की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। स्पेस लैब्स और स्टार्टअप्स यानी कि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो उनमें विशेष स्पेस लैब्स भी बनाई जा रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक के युवा स्पेस टेक स्टार्टअप्स जैसे कि सैटेलाइट निर्माण है, टेलीस्कोप है, मोबाइल ऑब्जर्वेटरी है, इन सब की स्थापना में बड़ी भूमिका भी निभा रहे हैं। दोस्तों, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इसमें एक्सिमो मिशन 4 में जो है शामिल हुए। इसके अतिरिक्त भारत के अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की बात करें तो इसमें भी युवा वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों को प्रमुख जिम्मेदारियां जो है सौंपी गई है। और दोस्तों, अंतरिक्ष संगवारी केंद्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के अंतर्गत अंतरिक्ष केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जो नई पीढ़ी की छात्रों के अंतरिक्ष यात्रा और अनुसंधान के सपनों को पूरा करने की प्रयोगशाला भी बन रहे हैं। और दोस्तों, अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की ये सक्रियता भारत को वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र भी बना रही है। जी हाँ, अंतरिक्ष केंद्र बनेगी और युवा सपनों को पूरा करने की प्रयोगशालाएं भी होगी, ताकि युवा जो है अपनी प्रतिभा को और निखार सके और अंतरिक्ष विज्ञान की ओर अपने कदम बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए कहा भी जा रहा है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवाओं के कदम जो है वो बढ़ रहे हैं, और उसका जैसे कि हमने आपको बताया कि मेन जो रीज़न है वो यही है कि यूं कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से जो है सरकार जो है वो साथ दे रही है युवाओं का, कि वो किस तरीके से जो है स्पेस में युवाओं का योगदान लें, और इसीलिए जो है युविका की जैसे हमने बात की, युविका जो संस्था जिसकी हमने बात की कि किस तरीके से जो है वो कार्यक्रम निकाल रही है, स्कूली छात्र जो है या फिर विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, युविका मतलब युवा विज्ञान कार्यक्रम। जी हाँ, और इससे क्या है, स्कूली

में वैज्ञानिक सोच जो है उसमें बढ़ावा होगा और विशेष कार्यक्रम जो है ये चलाया जा रहा है ताकि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सके और इससे उन्हें अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानकारी जो है वो प्राप्त हो। और जैसे युविका कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो भारत सरकार जो है वो युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर यानी कि शुरू से ही प्रयास कर रही है और इसी दिशा में जो है युविका की अगर हम बात करें तो उसके बारे में उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया ताकि छात्र जो है इसके प्रति रुचि ले सके और जिनमें रुचि है तो वो इसे और अच्छी तरह से जो है समझ सके और इसके बारे में और अधिक जानकारी जो है वो प्राप्त कर सके। युविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों में जो यूं कहें कि जो प्रारंभिक शिक्षा है अंतरिक्ष के प्रति वो उन्हें सिखाई जाए और इस कार्यक्रम में चयन प्रक्रिया पूरी तरह दोस्तों पारदर्शी और योग्यता आधारित है। छात्रों का चयन उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है और इसके बाद एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता की जाती है जिसमें सफल छात्रों को अंतिम रूप से चुना जाता है और चयन के बाद सभी दस्तावेजों का जो है सत्यापन किया जाता है जिससे कि किसी भी तरह की त्रुटि ना हो यानी कि पारदर्शिता की जैसे बात की है तो वो पूरी तरह से नजर आए। और दोस्तों अंतरिक्ष केंद्र जो है युवा सपनों को पूरा करने की एक प्रयोगशाला बन जाएगी। जी हाँ, इससे युवा अपनी हर सपने को पूरा कर सकते हैं। और जैसे हमने बात अगर शुभांशु की यानी कि वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु जो है उन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो उन्हें देख करके जो है भारत ने अंतरिक्ष में एक नया अध्याय शुरू करने की ओर कदम बढ़ाया है। जी हाँ, उनके 40 वर्षों में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने गए के वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें तो कई जो छात्र हैं छात्राएं हैं विद्यार्थी जो हैं वो कुछ बनना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं इस क्षेत्र में लेकिन उन्हें अवसर और मौका यूं कहे कि कभी मिलता नहीं है या किसी कारणवश जो है ऐसा कुछ हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब जो है ये पहुंच सब तक है क्योंकि गांवों में भी और शहरों में हर जगह जो है ये शिक्षा जो है वो दी जाएगी ताकि किसी का भी सपना जो है बच्चे का वो अधूरा ना रह सके और अंतरिक्ष में अपनी उड़ान वो अपने सपनों के जरिए जो है भर सके। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से चल रहे हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे बादशाह फिल्म का ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में। जी हाँ, ग्रामीण भारत के निवासियों को उनकी आवासीय संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक और डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करने की ये एक केंद्रीय योजना है। जी हाँ, इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। और अगर हम स्वामित्व योजना की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों के आबादी वाले क्षेत्रों की मैपिंग करना है। इसके आधार पर संपत्ति मालिकों को एक वैध दस्तावेज या प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। और दोस्तों

यूं कहें कि इसके बहुत से लाभ भी है। जी हाँ, बैंकिंग ऋण में जो है वो आसानी हो जाती है। संपत्ति कार्ड के जरिए ग्रामीण निवासी अपनी जमीन या घर को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। और गांव की संपत्तियों की सीमाओं का सटीक ब्यौरा होने से जमीन से जुड़े कानूनी विवादों और धोखाधड़ी में भारी कमी आती है, यानी कि विवाद जितने भी होते हैं उनका समाधान हो जाएगा। और सटीक ग्राम नियोजन, यानी कि सही डिजिटल नक्शों और रिकॉर्ड्स की मदद से ग्राम पंचायतें विकास योजनाओं और संपत्ति कर का बेहतर प्रबंधन जो है वो कर सकती है। और अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, इसके लाभ के लिए पात्र हैं, तो पंजीकरण की प्रक्रिया कुछ इस तरह है कि आधार कार्ड होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी आपका होना चाहिए, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, संपत्ति से जुड़े उपलब्ध दस्तावेज या यदि कोई भी तरह का हो तो वो जो है वो होना चाहिए। तो इन सब के दस्तावेज से जो है आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और योजना के तहत अब तक अगर यूं कहें कि लाखों गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तो ये सही है, और करोड़ों संपत्ति कार्ड सफलतापूर्वक वितरित भी किए जा चुके हैं। और दोस्तों, इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और अपनी संपत्ति का कार्ड की स्थिति देखने के लिए आप स्वामित्व योजना पोर्टल पर भी जो है जा सकते हैं, क्योंकि एक आधिकारिक वेबसाइट है। इसके जरिए जो है आप पूरी तरह से अपने आपका जो घर है उसके जो कागजात हैं वो अप्रूव करा सकते हैं, यानी कि स्वामित्व योजना, इसका स्वामित्व यानी कि जो अपनी चीज़ है उसका आपको हक मिलना चाहिए इस योजना के जरिए। यही है कि आप अपने घर के मालिक जो आप खुद हैं तो आपको मालिकाना हक मिलना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों से और भी बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती हैं अगर आप स्वामित्व योजना का लाभ उठा रहे हैं तो। अगर आप अपना घर जो खुद का हो जाएगा तो उसके बाद आप हर तरह की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला है, चाहे वो सौर ऊर्जा सोलर प्लांट वाली है, तो हर तरह से आपकी उसमें जो है आप उससे जुड़ सकते हैं, ताकि आप यूं कहें कि इस स्वामित्व योजना से आपको हर योजना का लाभ जो है मिल रहा है, यानी कि सब कड़ी जो एक से एक जुड़ी हुई है। और इससे ग्राम पंचायतों को भी सुविधा हो जाएगी हर तरह की सुविधा लेने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से चल रहे हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में बरसात फिल्म का ये गीत। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं समय प्रबंधन के महत्व के बारे में। जी हाँ, अपने लक्ष्यों को अगर आपको प्राप्त करना है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपलब्ध समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है, तो आपको समय का प्रबंधन करना सीखना होगा। जी हाँ, इसमें कार्यों की योजना बनाना, उन्हें व्यवस्थित करना, प्राथमिकता देना और समय की बर्बादी को रोकना शामिल भी है। दोस्तों, समय प्रबंधन के माध्यम से आप अपने 24 घंटों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए जो है बहुत सी चीज़ें जो है, अगर आप उसे अपने जीवन में उतार लें, एक समय सारणी हम जिसे कहते हैं, अगर वो हम रखते हैं, तो उससे समय प्रबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। सबसे पहले तो आपको प्राथमिकता तय करनी चाहिए, यानी कि अपने कार्यों को आपको 4 श्रेणियों में बांटना चाहिए, यानी कि महत्वपूर्ण और ज़रूरी कार्य जो कि आपको तुरंत करने हैं, और इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण हो लेकिन इतने ज़रूरी नहीं है उसे शेड्यूल करके रखें, आप कभी भी कर लें, और ज़रूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, यानी कि वो काम तो ज़रूरी है लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो आप करें तो आप वो दूसरों को भी सौंप सकते हैं, और जो न ज़रूरी हो और न महत्वपूर्ण तो उन्हें आप छोड़ दें। तो इसे दोस्तों आइजनहावर मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं। और इसके अलावा डू टू लिस्ट, यानी हर दिन की शुरुआत में एक सूची ज़रूर बनाएं कि आपको जो है दिन भर क्या क्या काम करना है, तो उससे आपको एक यूं कहें कि प्लानिंग अगर आपकी हो रखी होती है, योजना अगर आपकी पड़ी है, स्पष्टता है उसमें, तो आपका हर काम जो है वो निर्धारित समय पर जो है हो जाएगा। यानी कि पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हासिल करने योग्य हिस्सों में जो है विभाजित कर लें, और समय सीमा यानी कि आप उसमें डेडलाइन जरूर रखें, यानी कि हर कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा जो है वो तय कर लें। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य है जो एक घंटे में हो सकता है और आप उसी में 4 घंटे व्यर्थ अपने लगा रहे हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले डू टू लिस्ट कर लीजिए, आपको कौन कौन से काम करने हैं, और उसके समय की सीमा जो है वो भी निर्धारित कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि सोशल मीडिया की बात करें, ईमेल्स या फिर गैर ज़रूरी सूचनाओं की, तो उनके लिए जो है दिन में एक निश्चित समय जो है वो आप तय कर लें, क्योंकि इन सब चीज़ों से अवॉइड रहें, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्ट्स करते हैं आपको। और सबसे ज़रूरी, कई जो लोग होते हैं समय सारणी बना लेते हैं, अपना शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन उनमें एक बहुत ही यूं कहें कि एक बुरी आदत होती है, वो होती है टालम टोल की, यानी कि आप उसको ये सोचते हैं अभी नहीं बाद में। तो इस आदत से दोस्तों बचना चाहिए, और सबसे ज़रूरी कठिन जितने भी कार्य हैं उन्हें सबसे पहले करना चाहिए। और इसके अलावा आप पोमोडोरा तकनीक जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि टेक्निक की बात करें तो 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ काम करना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और ऐसे 4 चक्र पूरे करने के बाद एक लंबा ब्रेक, यानी कि लंबा मीन्स 15 से 30 मिनट का ब्रेक लें, और ये उत्पादकता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यूँ कहें कि जैसे आप 25 मिनट तक काम कर रहे हैं, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया है। ब्रेक का मतलब जो है ये नहीं है कि आप जो है टीवी या फोन जो है वो यूज़ करें, उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई अच्छी सी किताब जो है वो पढ़ सकते हैं, कोई अच्छा सा म्यूज़िक है वो आप सुन सकते हैं, और जैसे 15 से 30 मिनट का जो समय मिल रहा है तो आप कहीं अच्छी सी खुली जगह पे धूप में आप टहल सकते हैं, पर्यावरण के नज़दीक से आ सकते हैं, यानी कि नेचर के पास जा सकते हैं, पेड़ पौधों से बातें कर सकते हैं। मतलब यूँ कहें कि अपने समय का भी, आपको अगर समय बीच में दे आप अपने आप को दे रहे हैं अपना टाइम, तो उसका भी सदुपयोग करें, न कि आप इस टीवी और मोबाइल्स पे अपना समय व्यर्थ कर दें। और समय प्रबंधन दोस्तों असल में खुद का प्रबंधन होता है, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन जो हम कह सकते हैं, क्योंकि अपनी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठने और कार्यों को समय पर करने की ये आदत हम खुद ही डाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको आत्म अनुशासन की बहुत ज़रूरत होती है, यानी सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि समय प्रबंधन की हमने बात कर ली है दोस्तों, इसके बहुत से लाभ भी हैं। ये तनाव को कम कर देता है, जीवन शैली में सुधार होता है इससे हमारे,
और काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच अगर हम देखें तो बेहतरीन संतुलन भी बनता है और दक्षता और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यानी कि आपकी जो आप में कोई स्किल्स है तो वो भी आप डेवलप्ड कर सकते हैं। अगर आप सिंगिंग में अपनी आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अगर सिंगर बनना चाहते हैं या फिर सिंगिंग में आप अपना स्कोप देख रहे हैं, तो जो समय आपको मिल रहा है तो आप समय उससे देकर दे ना कि किसी और चीज़ को। और इसके अलावा भी बहुत सी हैं, कई लोग कुकिंग का शौक रखते हैं, कई लोग डांसिंग का शौक रखते हैं। तो अपनी शौक को जो है आप अपनी हॉबी को जो है अपनी शौक को जो है एक प्रोफेशनल लेवल तक भी ले जा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने बात की, अगर आपका समय प्रबंधन सही रहेगा तो आप हर चीज़ में दक्षता हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से चल रहे हैं संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत। और दोस्तों जैसे हमने समय प्रबंधन की बात की थी, तो अगर आपका समय प्रबंधन यानी कि टाइम टेबल अगर आपका सही रहेगा तो आप अपने करियर की ओर भी सजग रह पाएंगे। जी हाँ, अपने भविष्य को लेकर सक्रिय रहना और सही समय पर यूं कहें कि सही निर्णय लेना और लगातार अपनी कौशल को अपग्रेड करते रहना ही जो है करियर के प्रति सजग रहने का अर्थ होता है। जी हाँ, ये आपको वित्तीय स्थिरता तो देता है और मानसिक संतुष्टि ये भी आपको प्रदान करता है। और अगर आपको अपने करियर में सफलता और सही दिशा चाहिए तो आत्म मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है, यानी कि आप दूसरों की देखा देखी करने के बजाय अपनी रुचियों, क्षमताओं और कमजोरियों को पहचाने कि आप किस काम को कितने घंटे यानी कि आप कई घंटों तक करने के बाद भी अगर ऊर्जावान रह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो उसे अपने करियर का आधार बना सकते हैं। और कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो निरंतर सीखते रहना भी चाहिए क्योंकि तकनीक और कार्यक्षेत्र जो है वो लगातार बदलते रहे हैं। इसीलिए केवल अपनी डिग्री तक सीमित न रहें बल्कि अपने क्षेत्र से जुड़े और नए कौशल भी सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी दोस्त मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का

सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

अपने हूँ जिनके धर्म न दाया, दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी हमें।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

prende malita maca.

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी जयपुर अजमेर के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यहां से हर साल 6 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जा सकेगा, साथ ही करीब 2500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसका शिलान्यास किया। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में भिवाड़ी में एल्सिना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, 34 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और खैरथल तिजारा के कई विकास कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है और पिछले 2 सालों में 35 नई नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना जल समझौते के काम में तेजी आने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में सेमीकंडक्टर की 12 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 12 साल में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों के संयमित उपयोग से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। ईंधन बचत का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री खुद इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों के सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई है।
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
0: राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। 14 जून तक चलने वाले इस चरण के लिए प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इसके लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रगणकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एंट्री करने, परिवारों की सही जानकारी दर्ज करने और सर्वे के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का अभ्यास कराया गया। वहीं स्वगणना का विकल्प का आज आखिरी दिन है। स्वगणना के जरिए लोगों ने 1 मई से खुद अपने मकान और परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की। जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया है। कृषि आयुक्त ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने वाली थी, जिसके लिए पिछले 2 माह से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान।

0: पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत के दौरान चुनौतीपूर्ण समय में यूएई की भूमिका की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड इस बार की एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति का निजी विषय नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र से जुड़ा मसला है। श्री शेखावत आज बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा और कुशलगढ़ जैसे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय तक संसाधनों की कमी रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के बाद अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरिस्का प्रशासन ने कैनाइन डिस्टेंपर नामक खतरनाक वायरस के खतरे को देखते हुए अपनी निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित कुत्तों के माध्यम से बाघों में फैलता है। वर्तमान में सरिस्का में 52 बाघ हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन अब आसपास के क्षेत्रों में कुत्तों के टीकाकरण और बाघों की विशेष निगरानी पर जोर दे रहा है। भरतपुर के मुक्केबाज यश कुमार ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यश ने 33 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। यश कुमार जूनियर वर्ग में इस चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाला राजस्थान के पहले मुक्केबाज बन गए हैं। उनकी इस सफलता पर खेल जगत में खुशी की लहर है। और अब मौसम। प्रदेश के कई भागों में पिछले 24 घंटे में आंधी और बारिश की गतिविधियों से ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आमजन को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है।

हालांकि अभी भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर आज दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल से फिर तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। सीमावर्ती जिलों के लिए विभाग ने तेज गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प। और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के दौरे की। हाल ही में श्री मीना ने जिले के भुसावर क्षेत्र के झरोटी गांव में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में लोक गायन और लोक नाट्य को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति की पहचान है, इसकी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया। डॉक्टर मीणा ने इस दौरे में दलपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। उन्होंने जनसुनवाई भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और अन्य समस्याओं से कृषि मंत्री को अवगत कराया। कृषि मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए बने कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और किसानों से जैविक खेती अपनाने की भी अपील की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में भरतपुर में आयोजित हुई। इसमें केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से समयबद्ध क्रियान्वयन कर आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों का चयन कर गुणवत्तापूर्ण आवास बनवाने को कहा। साथ ही राजविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत पिछले दिनों एक दिन के भरतपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने अपना घर आश्रम में 4 नए भवनों का लोकार्पण किया, साथ ही बालिका सदन का भूमि पूजन किया और राष्ट्रीय आश्रम तथा गौशाला की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। उन्होंने सेवा और संस्कारों पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है, इसे बनाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से शैक्षिक सुधारों के लिए स्वयं प्रेरित होकर ब्लॉक वार कार्य योजना बनाकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। जिला निष्पादन समिति की बैठक में उन्होंने मिड डे मील योजना की सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिले में 428 कन्याओं की विवाह पर लगभग 1,96,00,000 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। कन्याओं के विवाह के लिए दी गई सहायता राशि से गरीब परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता फैलाई गई। इस दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में किशोरियों और महिलाओं को जानकारी दी गई। 8वें पोषण पखवाड़े का आयोजन भी पिछले दिनों जिले में हुआ। इस दौरान बच्चों और महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण के

0: प्रति जागरूकता फैलाई गई। विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियां आयोजित कर मातृ और शिशु पोषण के महत्व और एनीमिया से संबंधित जानकारियां दी गई। इसके अलावा मोटे अनाज और स्थानीय खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाकर पोषण के महत्व से अवगत कराया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस मौके पर भरतपुर के श्री शमशानेश्वर महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भजन कीर्तन सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित आसपास के जलीय क्षेत्र में बीते दिनों सारस गणना की गई। मचानों पर बैठकर उद्यान के कार्मिकों, पर्यावरणविद, गाइड और पक्षी प्रेमियों ने इस काम में शिरकत की। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला। हर साल 6 करोड़ चिप बनेला। राज्य में जनगणना 2027 रा तेत काल मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू ली जावन वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को जू भेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला। वो क्लस्टर बनावन रा काम माए करीब 1,200 करोड़ रुपया रो निवेश फैला। ये कारखाना माए हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जा सकेला। ऐसा गई करीब 2,500 लोगा ने नौकरी धंधा रा मौका मिलेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज वर्चुअल तरीका इनरा काम री शुरुआत की। वह ईसा गई 400 करोड़ रुपए भत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रा काम री नींव रखी और पूरा व्याकाम रो उद्घाटन किनो। ई मौके मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार प्रदेश माए निवेश ने बढ़ावो देवन सारू लाडला 2 साल माए 35 नीतियां बनाई। वह दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने जोड़बा वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रा तहत काम माए तेजी लावन री जानकारी दीनी। श्री शर्मा बतायो कि सरकार नौजवाना सारू पंचायत लेवल माथे अटल ज्ञान केंद्र खोलन माथे ध्यान दे रही है। ई मौके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो कि देश माए सेमीकंडक्टर बनावन रा 12 कारखाना लगाई गया है और लाडला 12 साल माए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हल्का माए 6 गुना बढ़ोतरी सा गए। अब कुल उत्पादन 13,00,000 करोड़ रुपया रा लेवल के न उगरियो है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13,00,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इंडरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो है। वह आज जयपुर में राखी चेयर राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि पेट्रोल डीजल री बचत करण री सगला री जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू लाडला दिना करी जी अपील पाछे मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार सरकारी गाड़ियां सीमित तादाद में काम लेवण जुड़िया निर्देश जारी कीना है। वह कहो कि राजस्थान सूरज री रोशनी बिजली बनावण रा हलका माए देश माए अगाड़ी है। मुख्यमंत्री कहो कि अक्षय ऊर्जा ने बढ़ावो देवण सारू राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू करी ची है। वह कहो कि सरकार साल 2030 ताई 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रो लेवल हासिल करण न ध्यान रखता थका काम कर रही है।
3: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828

0: गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
1: राज्य में जनगणना 2027 रा पहला दौर रातेत काल मकानारी लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो चावेला। 14 जून तक चालन वाला इन काम सारू प्रगणक घर घर जार जानकारी भेड़ी करेला। इन सारू प्रदेश में न्यारी न्यारी ठोणा सिखावण शिविर रे जरिए प्रगणका ने जरूरी सिखावण दीरी जी माने मोबाइल ऐप रे जरिए जानकारियां रो इंद्राज करण परिवारां री जानकारी दर्ज करण हर सर्वे रे दौरान रखी जावन वाली सावधानियां रे बारे में अभ्यास कराई चियो। इन बीच स्व गणना करण रो आज आखिरी दिन है। स्व गणना रे जरिए लोग खुद 1 मई हमारा मकान और परिसंपत्तियां जुड़ी जानकारी ऑनलाइन तरीका दर्ज करा लिया है। जयपुर में 23-25 मई ताई रखी जावन वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 टाल दीरी जी है। कृषि आयुक्त रियोरों आज इन 12 मई हुक्म जारी करी चिया। ध्यान जोग है कि इन कार्यक्रम सारू लाडला 2 महीनाओं तैयारियां करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात रा अबुधाबी माए वटेरा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सागे मुलाकात कीनी। इन दौरान ऊर्जा सहयोग और दोनों देशों बीच कारोबार जुड़ी चर्चा करी ची। प्रधानमंत्री मोदी UAE माथे हाल ही माए करी जिया हमला री कड़ी निंदा कीनी। वह मुश्किल वगत माए UAE रा काम री सराहना करता थका। UAE सारू भारत री हिमायत री पुष्टि कीनी। श्री मोदी कहो कि तनातनी रा मौजूदा दौर माए बातचीत और कूटनीति आगे चालन रो गेलो है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: देश रा मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून ने ओजुली जावेला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में नीट UG परीक्षा रे बारे में खबर नवीसा साके बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे बतायो के इन सारू 14 जून ताई एडमिशन कार्ड जारी कर दिया जावेला। श्री प्रधान कहो कि 21 जून ने ओजू ली जावन वाली ई परीक्षा री कोई फीस नहीं ली जावेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहो कि हाल ताई OMR शीट माथे ली जा रही नीट परीक्षा आवता साल कंप्यूटर रे जरिए ली जावेला।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है OMR शीट को दस्तखत करना आरंभ में एक बार करना अंत में भी एक बार करना उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी देर एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: शिक्षा मंत्री कहो कि विद्यार्थियों ने परीक्षा देवन सारू पसंद रो शहर चुनबा रो मौको दियो चावेला। मंत्री कहो कि CBI नीट पेपर लीक मामला री पूरी जांच करेला। ध्यान जोग है कि 3 मई ने भी नीट परीक्षा 2026 पेपर लीक वेवन री शंका पाछे रद्द कर दी रिची ही। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि स्वास्थ्य

0: केवल इंसान रो निजी मुद्दों नी है बल्कि पूरा समाज और देश हूँ जुड़ियो है। वे आज बांसवाड़ा जिला रा कुशलगढ़ में एक अस्पताल रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री आयुष्मान भारत योजना रो जिक्र करता थका कहो कि इरा तेत 5 लाख रुपया ताई रा खर्च रो इलाज मुफ्त करावन रो सुबी तो दियो चावे है। मध्य प्रदेश रा कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघां री मौत रा मामला पाछे अलवर जिला रा सरिस्का टाइगर रिजर्व में सावचेती बधा दी रिची है। प्रशासन कैनाइन डिस्टेम्पर नाम रा खतरनाक वायरस रा खतरा न ध्यान रखता थका निगरानी टीमा ने काम माथे लगाती नी है। जानकारा ने मुजब ओ संक्रमण संक्रमित कुत्ता रे जरिए बाघा माए फैले है। सरिस्का टाइगर रिजर्व माए 52 बाघ है जाने संक्रमण बचावन सारू आरएसआर रा कुत्ता रे टीका लगावन माथे जोर दियो चाहियो है। भरतपुर रा मुक्केबाज यश कुमार उज्बेकिस्तान रा ताशकंद माए राखी जी एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप माए सोना रो तमगो जीतियो है। वह 33 किलोग्राम भार वर्ग रा फाइनल मुकाबला माए कजाकिस्तान रा खिलाड़ी ने 4-1 हराया। यश कुमार ई चैंपियनशिप रा जूनियर वर्ग माए सोना रो तमगो जीतन वाला राजस्थान रा पहला मुक्केबाज बन गया है। अरबे मौसम प्रदेश रा कई हल्का माए लाडला 24 घंटा माए आंधी और बारिश वेवन रे कारण पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो। इनु गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। हालांकि हाल ही कई थोड़ा ऊंचो तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो चाहियो है। दूजिकानी आज दौसा करौली सवाई माधोपुर और जयपुर जिला माए कठे कठे जोरदार बायरो बजन सागे हल्की बिरखाफी। मौसम विभाग रे मुजब काल नु ओजू पारो चढ़बारा आसार है। महकमो सरहदी जिला सारू तेज गर्मी और लू बाबत चेतायो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओजो सुन ले रहा सा 1-800-117-800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माई खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला। हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जावेला। प्रदेश माए जनगणना 2027 राते कालू मकाना री लिस्ट बनावन रो काम करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत न इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज माए दाखिला सारू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून ने ओजू भैला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं ग्रामीण जनों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनाड़ा सिंह ग्रामीण भाइयों ने केड़ा भाई रा
1: मनोज भाई रा घना घना राम राम कैलाश
0: भाई राम राम मनोज भाई राम राम मनोज भाई सब सुन पहली तो जो को बात है वो आपन सब अपने ग्रामीण भाइयों से करनी है कि गर्मी से थोड़ा बचाव रखे समय निकल जाए। हालांकि गर्मी यहाँ पर वैसे नई चीज तो कोनी पर लगातार आप और सरकार भी ये बारे में जो को एक आपको कैसे एडवाइजरी या जो को सलाह जारी कर रही है कि भाई गर्मी थोड़ी ज़्यादा है और हो सके आप ये भी थोड़ा कह सको कि पहले जो को लोगों में सहन शक्ति थी वो सहन शक्ति शायद आज उसमें कुछ कमी आई है। रूरल अलावा लगातार कुछ आप और पेड़ों की कटाई हुई है, पर्यावरण जो को है अगर आप बात करो थोड़ा असंतुलन बढ़ी हुआ है तो निश्चित रूप से जो जो जो विकास भी अगर आप कह जाइए तो विकास के साथ साथ में थोड़ो प्रकृति रो या पर्यावरण रो विनाश भी निश्चित रूप से
1: हो। कैलाश भाई आप गर्मी लेके कहो जो बढ़िया बहुत सही जानकारी दी हो। अब ये भी देख रहे हो कि पिछले जब कुछ दिनों से गर्मी में तापमान में बढ़ोतरी हुई है तो जिला स्तर में जी को प्रशासन द्वारा भी जी को कुछ निर्णय लेके जो प्राथमिक विद्यालयों तक जो है समय में कटौती की गई, समय जो स्कूल की समय सीमा है उन्हें कम की गई और बात उन और भी कम की गई। और हमें आप और देख रहे होंगे शायद एक दो दिनों बाद जो है
0: ग्रीष्मकालीन
1: अवकाश भी लागू हो जाए तो एज को क्योंकि विशेषकर जो मई और जून दो महीनों है बहुत ज़्यादा तड़के गर्मी हुआ करे। जुलाई में धीरे धीरे असर कम होना शुरू हो जाऊ क्योंकि बारिश भी हो जाऊ, मौसम में परिवर्तन आ बादल भी घना हो तो एज को है धीरे धीरे तापमान में पक्षी गिरावट होनी शुरू हो जाऊ। लेकिन मई और जून है विशेषकर गर्मी रादू महीना है जिकर में आप देखो कई बार शाम रहे जो है संध्या 8 बजे 9 बजे तक भी गर्म लू जो है वो बजिया करे तो लू चलिया करे तो इन देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश भी हो जाए। और जो भी अपना व्यापारी भाई है उम्र भी जो है काम काज लेके वो अपना समय आप जो है निर्धारण करके और उन्होंने उचित तरीके से करे ताकि उन्होंने जो
0: और गर्मी रे मौसम में विशेष तौर से जो है पानी की भी समस्या आ गई क्योंकि आप हमें जो है पानी रे वास्ते नहर रे पानी में निर्भर हो। कई बार जो है नहर की सफाई या नहर बंदी की वजह से पानी की समस्या हुई तो जो पुरानी टाइम थी बट पारंपरिक जल स्रोत था उम्र में थे आप निर्भर था या आप कह सकें वो समय में आप आत्मनिर्भर था निर्भर को नहीं आत्म जो बावड़ी है जोड़ है टोंको है और झीलों है और आप खुद आप वर्षा जल और संचयन करो उसमें खेती रे मामले में भी आप खेत तड़ाई अगर बनाऊँ पूरे अलावा भूजल पुनर्भरण और सूखे रिश्ते से निपटने वास्ते जो कोई प्रभावी और प्रासंगिक तरीका है यो संरचनाओं अपना पुनर्जीवित करने वास्ते ग्रामीण जल सुरक्षा रेमो ये सुवृद्धि होया करे और स्थानीय अपर समुदाय सशक्त हुए। भारत रेमो विशेषकर जो को राजस्थान जो आप प्रांत है ये रेमो शुष्क क्षेत्रों में तरीका जो पानी की कमी न दूर करने वास्ते ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। और
1: देखो बावड़ी की बात करो तो आप देखिए अगर कई अड़ी जो सीढ़ीदार कुआ होया करे जिकर में भूमिगत जल जो है उपलब्ध नया करे उन आप बावड़ी क्या करो और साथ साथ जो है जोहड़ है छोटे मिट्टी का चेक डैम हो गया जो वर्षा और पानी ने इकट्ठू करके रखे जो पशुधन वास्ते जो है पानी की उपलब्धता दिया करे। और आप देखिए अगर पुराने शहर में या गांव में ग्रामीण क्षेत्र में हर घर है बाहर एक टाको जरूर बनाए जावे और टाको जो है वर्षा जल न एकत्रित करके रखे और वो जो है बार बार सेवन आप जो इस्तेमाल कर सको और साथ साथ झीलों और तालाब जो है प्राकृतिक रूप से भी है कई आप जैसलमेर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मैं शहरी जब बात करें तो पुराने समय में जो गढ़सीसर झील है एकमात्र जो पेय जो है शीतल पेय पदान करते पूरे शहर ना तो यह भी एक जो है झील वैसे गढ़सीसर झील अगर आप बात करो तो एक प्राकृतिक नहीं हो कि ना आप कृत्रिम झील भी कह सको मानव निर्मित है ना बनवाई गई थी और बड़ी ही अब जब हाँ देखो आप बात करें जब इंजीनियरिंग तरीके से नाप तोल करके और बराबर तो वो ना बनाउन जो ढांचो तो बड़ो ही शानदार है तो वो नक्शे अगर बात करो क्योंकि आस पड़ोस पीछे आप देखो नहीं बावड़ी है या और भी ग्रामीण क्षेत्र है दहुआ है या बाकी जो क्षेत्र है और एयरपोर्ट वगैरह है सब जगह से जो है पानी धीरे धीरे धीरे धीरे रिस के और वो रोज को है आप कई बार देखा करो जब बरसात और मौसम होया करे तो आप गढ़ीसर तालाब जो है काफी हद तक खाली भी दिखे लेकिन बारिश बंद होने 2 या 3 दिन बाद धीरे धीरे वो तालाब जो है भर जावे।
0: निश्चित रूप से जो को है पानी रे बहाव रे क्षेत्र है और उरे बाद में जे ढलान रे या नीचे स्थान तो वो जगह नो एक वो समय री जो को इंजीनियरिंग रो एक आप कह सको नायक राजा गढ़सी सिंह जी ने बनाया तो और उरे अलावा जो कोई शहर में और भी आपन तालाब मिले जिके में गुलाब सागर है, डिडांसर तालाब है, मूल तालाब है, जीवनियाई तालाब है। आप और जैसे मेरे शहर में उरे बाद में घर गांव रे मोए एक तलाई निश्चित रूप से पहले
1: निश्चित
0: से
1: रूप से
0: होती
1: है
0: थी, और
1: और आज
0: भले
1: भी
0: भले
1: है।
0: छोटी आबादी रहे भी मतलब वो गांव होता तो भी वे गांव री पे चल रही या पानी री आपूर्ति रिवासे उरी आवश्यकता पूरी करना
1: आज भी
0: चाहिए।
1: कई अड़ा ग्रामीण क्षेत्र जिकर मोए तलाई रो पानी जो है एकदम शुद्ध और स्वच्छ रहा करे। कोई कोई तलाई में जो है पशुधन पानी जो है पीने वास्ते वो इस्तेमाल भी करया करे।
0: और संरक्षण जो को सबसे बड़ो महत्व है कि भूजल पुनर्भरण भी ये माध्यम से होया करे, क्योंकि जितो आप और भूमिगत जल स्तर नीचे जा से उतो ही जेगा आप कह सकते हो कि भविष्य वास्ते वो खतरे की घंटी है। तो भूमिगत जल स्तर न ऊंचे उठाने रे मोए बहुत ज्यादा मददगार है, और सूखे री जो को समय रे मोए ए जो को जल स्रोत है वो आप और मानव जीवन न सुनिश्चित करे, क्योंकि वो टाइम जीवन और मरण का प्रश्न हो जाएगा। क्योंकि आप और पुरुषों कहे हुए कि जल ही जीवन है, तो वो समय में मतलब है तो महत्वपूर्ण हो जाए जिगरी आप आज बात कर रहे हो। और मृदा रो जो का प्रदन है ईरी रोकथाम भी है, तालाब है
1: पानी रे
0: बावड़ी
1: बहाव ना धीमो करके मिट्टी रे कटाव ना रोकना ए भी ईर मौज को आया करे।
0: और ये रमो कई बार आप देखिए कि भाई जहाँ कोई व्यक्ति विशेष कोई तालाब ना बनावे और वो ना मतलब जो है जन उपयोग वास्ते समर्पित करे, तो एक सामुदायिक भागीदारी रो एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है।
1: उदाहरण है
0: ये सो मतलब स्थानीय लोगों की भागीदारी भी हमें हुई और निरंतरता सुनिश्चित हुई। जब हमें कदे बरसात से पहले हुए में लगे खुदाई करे वो सफाई करनी हो तो सफाई किया करे, तो एक प्रकार से जो को कह रही निजी मिल्कियत नहीं हो सब लोगों की मतलब जो को ये में समान रूप से भागीदारी बने। तो आप परंपरागत जल स्रोतों के बारे में बातचीत की और आपने कार्यक्रम जो को मुख्य ऐसो है आप और लोक संगीत आप और लोक संस्कृति,
1: हमें
0: तो
1: सबसे
0: आज
1: बढ़िया
0: आप
1: राजस्थानी लोक संगीत
0: अमर भूंगर कौन आवाज में एक बढ़िया लोक भजन सुनो जगह बोल है आज तो हमारे भाग भोले शंकर आवी है।

बड़ो साहेब आए आज नगर

बड़ा भाग एली तेरा बड़ा भाग सैंपू पर पाए आज तो हमारी भाग महादेव आए।

0: अमर भूंगर कौन है आवाज में बढ़िया लोक गीत सुनियो और मैं आप बात करा मोटे अनाज री। तो मोटे अनाज सु तात्पर्य आप जो विशेष तौर से आप जैसे मेरी बात करा तो आप बाजरे री जे पर हमें उम्र में और भी अनाजों जो है नाम काफी आउन लग गया है और उरे साथ में थोड़ा बहुत ज्वार रो भी प्रयोग होता तो पर मोटे अनाज में रागी भी है और कोदो है कुटकी है सावा है और कंगनी है। मोटे अनाज रो हणो बहुत ज्यादा महत्व है। मोटे अनाज नो जो को है अंग्रेजी रे मोई भी हमें एक बड़े नॉम मिलेट्स दियो गए उरे अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी जो को है मोटे अनाज नो श्री अन्न कहो है और ए फाइबर और कैल्शियम और उरे साथ साथ में आयरन से भी भरपूर होया करे और ये राज्य को पारंपरिक व्यंजन है वो में विशेष तौर से जो को पहले बाजरे रही तो रोटी तो आप शुरू से ही देखा ही जाओ होती थी आज भी लोग चाव सो खाया करे विशेष तौर से सर्दी रे मौसम में ज्यादा पसंद करे कड़ी रे गरम गरम कड़ी रे साथ में और अलावा भी जो है कई सब्जियां साथ में खाई जा सके जहाँ पर कैर सांगरी और देसी सब्जियां है। पर बाजरे रे जो लड्डू होया करे उनमें गुड़ गोंद और घी रे साथ में मिलाई ने बनाए जावे और चाहूँ तो इनमें मखाने रा बीज भी आप मिला सको। बाजरे की खिचड़ी या राब जो है गुड़ के साथ में भी मीठी भी होया करे और नमकीन भी बनाई जा सके और बाजरे की जो मठरी है वो ना आप एक नाश्ते के रूप में एक आप कह सको संतुलित और हेल्दी यानी स्वास्थ्यवर्धक जो है एक नाश्ते का आहार है। ज्वार की जब आप बात करें तो ज्वार की रोटी तो बनती जी और अपोरे जो पूर्वज है वो कई बार जो है विपरीत परिस्थितियों में प्रयोग किया है।
1: सबसे महत्वपूर्ण जो है ज्वार और दलियो है जो विशेष आप देख रहे हो ग्रामीण क्षेत्र में लोग सुबह नाश्तो जो जोखड़ करे उनमें ज्वार और दलियो जो खाना ज्यादा पसंद करिया करे।
0: महाराष्ट्र में ज्वार री जो भाकरी बढ़िया करे और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और एक नयो चलन कह सको या लोगों की जो स्वास्थ्य प्रति जागरूकता कह सको कि आज जो बहुत बड़े महानगरों रहा जो बड़ा बड़ा आप रेस्तरा या जिकन आप खाने री आप कह सको दुकान हो वो तो हमें श्री अंशू बनोड़ा कई प्रकार का व्यंजन जो है मिले और वो ना लोग बेहद मोंग रहे मथे बेहद साव सु मतलब खा रहे और वो का बहुत ज्यादा महंगा भी है लेकिन पूरे साथ साथ में जो ये गुण है गुणों से भरपूर है ये वजह से लोग जो है इन्हें खा रहे और आप प्रधानमंत्री जी की अपील रहे बाद में और वो जो ये उपयोग बढ़ाने बाकी और इन्हें जब श्री अन्न नाम दियो तो पूरे बाद में यार लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी है और ज्वारी बर्फी भी बढ़िया करे ये में मतलब खो और काजू मिला नहीं इन्हें बनाया जा सके। रागी वैसे विशेष तौर से जो है बच्चों ने तो हनसो मतलब आप और यह भी देवन पिछला हालांकि रागी री जो पैदावार है आप और इलाके में कौन होया करे पर दक्षिण भारत रे मोए उपजे भी और वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। ये रो डोसो भी बढ़िया करे और रागी रो पे आप माल कह सको बहुत स्वास्थ्यवर्धक होया करे और जागीरी बर्फी या बिस्कुट भी जो है हिमाचल प्रदेश में महिला समूह जो बना रहे और ये ना आप व्यापारिक तरीके से विपणन भी कर रहे हैं। तो ये तरीके से जो सांवारा जो चावल है और ये खीर है ना व्रत में खाई जा सके या राजगरो भी आप कह मोटो अनाज है आप रेत भी जो एकादशी वगैरह दिन या बीजे व्रत दिन उपयोग किया जाओ तो ये तरीके से आप जो परंपरागत व्यंजन है आप खुद भी यहाँ अपनाओ और आप और स्वास्थ्य वास्ते भी बढ़िया रहे और जब आप एक मिश्रित अनाज खाओ नहीं सलाह दी जाओ या आप जो है समय समय में अनाज में बदल भी खाओ तो भी आप और स्वास्थ्य वास्ते बहुत ज्यादा लाभदायक होया करे। और एक गीत आप मुल्तान खां पार्टी की आवाज में सुनो जिस तरह बोल है।

Thank you.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम।

lumba lumba lumba lumba lumba.

আলিয়া মারো গোরে মাটি না খেরালো, মাটি মারো গোরে মাটি কালো।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।

मिली थी तुमसे सब पनहारियां, दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना से गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और इस गीत को संगीत से ज्यादा रखने का। आइए सुनते हैं फिल्म अवतार से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अवतार से ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और गीत को संगीत से ज्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए सुनते हैं ये गीत।

करते जवानी मेरी जान मस्ता तूने कदर ना जाने राम।

0: मुझसे बढ़के कहीं तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला कुछ कम नहीं हो जाहिर मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़के कहीं तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला कुछ कम नहीं
1: हाय दुनिया

उसके कदम चूमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा।

0: कब चिकने में तू है ऐसी बुरी,
1: हाय दिखे जो मोहे तेरे प्यार की बुराई, हो जाए शर्म तेरे पानी आवा,
0: करते जवानी मेरी चाल मस्ता।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कारवां से ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत के बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के और गीत को संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें,
1: नजारे हम क्या देखें, नजारे।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी कभी से गीत, आवाज थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोल थे साहिर लुधियानवी के और इस गीत को संगीत से सजाया था खय्याम ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

रंग न किसी का होए, गोरा रंग न किसी का होए, के सारा जग बैरी हो जाए, के सारा जग बैरी हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जानी दुश्मन से ये गीत। आवाज थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे वर्मा मलिक के, और इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध परिवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय विश्व टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्काबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने UAE के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच

0: सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
2: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वाडेला में 4 मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का निर्णय करना भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा सम्पन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होगी। व्यापार के दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार प्रतिवर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब रुटे के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष के रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
4: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले 2 दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों
1: गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को 8 कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
1: युद्ध जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एवरेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री बजेंद्र शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश में बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटी जो है, आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है। और इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपोर्ट जो पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों के कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान परीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कायकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
3: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर्बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में

0: पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 97 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। भारतीय रूसी टीम ने मकाओ में 11वें सामने विश्व कप में 2-1, 1-2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2-7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्मैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने ऐसे अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through state economies for regional stability and energy security. Wake's foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in a UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bihar till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India completes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन और बदल भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his 5-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorted his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting on a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. We have more from our West Asia correspondent.
3: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise U.S. participation in India's Strategic Petroleum Reserves to 30 million barrels.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म लोफर से ये गीत। आवाज थी मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और इस गीत को संगीत से सहायता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं फिल्म हस्ते जख्म से ये गीत।

आता है, होता है ये दिन के जमी से भी कभी आसमान मिल गया।

मिल गया कि जहां

आज नबी जमाना अपना कोई न था, आज नबी जमाना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का

अजनबी जमाना अपना कोई न था, था अजनबी जमाना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का

हम तो ये लगता है कि यहाँ मिल गया एक भटके हुए जाहिर।

अभी आप सुन रहे थे हंसते जख्म से ये गीत, आवाज थी मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे कैफी आजमी के, और इस गीत को संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम।

Hari mein rangila ho jo hira ban

Thank you.

Thank you.

कैसे

Que se dio a Charlie Hillerón.

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आई है रंग भर शाम, फूलों के छल के है नाम, औरों ने दिल लिए नाम, ऐसे में है हो तो है हो, ऐसे में तोड़ के प्रेम की डोरी चतोरी ओ गोरी, तू कहाँ चली।

कब तक हम आह भरेंगे, आजा तो बात करेंगे, छुप के मुलाकात करेंगे, ये सच है हे हे हो, तो हे हो। ये सच है मैं हूँ एक दीवाना, ये माना न जाना, तू कहाँ चली हो मन चली।

जो ऐसी आई हुई है, बदली भी छाई हुई है, तू तो घबराई हुई है, मुझसे शर्माई हुई है, चार याद से आके चुरा के सता के जला के तू कहाँ चली तू।

0: पागलों की तरह हफ्ते को क्या हुआ?
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म मंचली से ये गीत। आवाज थी किशोर कुमार की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

तुम आल बसे इन आँखों में बनके सपना।

जग ये बंधन ना तोड़ सका, हम तोड़ के हर दीवार मिले इस जन्म।

अभी आप सुन रहे थे मिलन फिल्म से गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और गीत को संगीत से ज्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे राजा और रंग फिल्म से गीत, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे राजपूत फिल्म से ये गीत। आवाज थी किशोर कुमार की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और इस गीत को संगीत से सहायता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म समाधि से ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत के बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के, और इस गीत को संगीत से सहाया था आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे शोर फिल्म से ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश थी। गीत के बोल थे संतोष आनंद के, और इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला से ये गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: प्यार कर ले घड़ी दो
1: घड़ी,
0: प्यार कर ले घड़ी दो।
2: अभी आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म से ये गीत, आवाज थी लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, गीत के बोल थे संतोष आनंद के और इस गीत को संगीत से सहायता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया।

शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे।

देखो वो गोरी गोरी रानी हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है विदाए, जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी रानी हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है विदाए, जापानी परियां मुस्कुराए।

शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये दिल गुड़िया जापान की ले गई, दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे।

गोरी गोरी दाई, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है विदाई, जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी दाई, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है विदाई, जापानी परियां मुस्कुराए, ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे

प्यार में जवानी कहती है प्यार की कहानी आई वो कैबर की रानी जिसकी अदा में जिंदगानी नाचे हर मोड़ पे जवानी कहती है प्यार की कहानी आई वो कैबर की रानी जिसकी अदा में जिंदगानी ले गई दिल गुड़िया जापान की ले गई गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म लव इन टोक्यो से गीत। आवाज थी मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे हसरत जयपुरी के, और इस गीत को संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: के साथ हूं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होमस जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने UAE के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और UAE ऊर्जा प्रौद्योगिकी निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में यह बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान ASA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनोद गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और यह सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी को पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTI की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। जगत भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jayashankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a media house on sales or tax or surcharge on foreign travel. He said the report is totally false and there's not an iota of truth in it. The Prime Minister said there's no question of putting such restrictions on foreign travel. The Central Bureau of Investigation has arrested the kingpin in connection with alleged irregularities in paper leak related to NIT UG 2026 examination. The agency said that P.D. Kulkarni has been arrested at Pune after thorough interrogation. P.D. Kulkarni is a chemistry lecturer involved in the process of examination on behalf of